0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको
2: हाँ?

0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
0: Classic Nagme. Aapke apne Laika Gold par.

0: Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: Leica Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
2: के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर। रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म से।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एकावार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: Performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
1: Dil ne ye kaha hai dil se
2: bol chudiya.
0: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
6: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
7: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
6: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
7: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
6: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
7: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
6: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
7: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Dad,
4: what's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
5: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-8839-0880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: Mamster पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
4: Breakfast with Deep Raja.
5: बन गया अच्छा.
6: अच्छा जी.
5: एक बहाना बन गया अच्छा.
6: अच्छा.

0: से निराला।
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी।
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजास, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444, दैट्स 0208-907-2444।
4: 10 days to Turkey guaranteed. Departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Breakfast with Deep Roger.

0: Breakfast with Deep Roger. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound in your pocket can get you 128.61 Indian rupees, 370.18 Pakistani rupees, 447.90 Sri Lankan rupees, and not forgetting 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And the gold rate is currently standing at 97.95.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: Okay, speak to you all after the news.
0: Breakfast with Deep Roger.
3: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दारिसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
4: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
3: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
4: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
3: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज लेमिनेट्स 30 पाउंड से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: Life doesn't always send a warning. A family matter, a property issue, an immigration concern, or a business dispute. When things feel complicated, Rack Law solicitors bring clarity, care, and trusted legal support. From family, property, and immigration to corporate law, your matters, our expertise. Call Rack Law solicitors on 0203 345 2000 or visit racklaw.co.uk.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
13: Tasty swag and sweet charm Every spoon feels like a tropical warm मेघपुरी एंड आमरस और मिल्क शेक फुल टेस्ट इतना प्योर हो जाए हैप्पी सोल।
14: मैंगो सीजन हैज अराइव्ड यर ऑल्सो विद जैमिन्स मैंगो पल्प। नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स, ओनली प्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैंगोज।
13: जैमिन फूड्स मैंगो पल्प अवेलेबल नाउ।
15: Deep Raja, waking you up every weekend. Like

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
2: शाम चलने लगे दिल मच
1: विद द लेजेंडरी अनूप जलोटा ऑन संडे 30th ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड। डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम £40। बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk। रेडियो पार्टनर्स लाइक आवर रेडियो नेटवर्क।
3: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर।

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
3: लाइक अ गोल लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
4: Artist of the week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Breakfast with Deep Raja. Leica Gold, traffic and travel.
2: I'm Gary King at Edgware Stone Grove. The A5 currently closed still in both directions this morning due to emergency repairs just near the Orchard Drive. The M4 on the Heathrow Spur Road southbound looking busy heading in towards the terminal buildings. Do expect delays through roads through central London. Day 2 of the London Triathlon. Road closures in place until around 6:30 on roads between Galleons Roundabout, past the Excel through to Limehouse and the Silvertown Tunnel. And at Coulsdon, the A237 on Brighton Road closed in both directions due to emergency repairs just near Coulsdon train station. And that's the latest traffic and travel.
3: Leica Gold
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
7: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
8: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इल्फोर्ड में.
7: सच?
8: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
9: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंस हिल, इल्फोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इल्फोर्ड.
10: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं. विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
11: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
12: Dad,
13: what's wrong, beta?
12: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
13: I will run down to the money exchange now.
12: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
13: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
12: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहे छे.
14: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने ले जाई रहे छे आप पवित्र यात्रा पर.
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
14: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे.
7: दर्शन पण अने यूरोप पण.
14: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
7: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स.
14: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
6: अटेंशन, द आईटेक डेसी इंडिपेंडेंस फूड फेस्टिवल एंड ट्रेड वीक इज ऑन फ्रॉम द 3rd टू द 9th ऑफ ऑगस्ट एट आईटेक कैश एंड कैरी साउथहॉल विद अनबीटेबल होलसेल डील्स ऑन राइस, डेयरी, फ्रोजन फूड्स, फ्रेश प्रोड्यूस, कैटरिंग essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. iTech Wholesale, open 24/7. Everything your business needs.
15: needs all under one roof.
16: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Deep Raja, making you feel good every weekend breakfast.
17: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Charger, waking you up every weekend.
1: Forgot to quickly mention about the question earlier and the TV license. Is it worth it or not? Most of you have said yes. Although we do watch other programmes, the TV license is still worth it. That was a question I asked earlier in case you forgot. Take care. Ritu Sharma after that. See you at 7 a.m. next week. Bye-bye.
0: Breakfast with Deep Raja.
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
4: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
4: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
10: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T&Cs apply.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
13: ईमेल नाउ
14: info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: Sonatours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
16: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
0: Deep Roger, making you feel good every weekend breakfast. Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station.

0: क्या खूबसूरत गाना है लता जी और किशोर दा की आवाजों में, और उससे पहले आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज सुनी। लीजिए तो बैक टू बैक गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आज संडे का दिन है, 26 जुलाई है, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा आपके साथ है अब से लेकर दोपहर के पूरे 1 बजे तक आपका साथ देने के लिए। और आपको बताती चलूं कि ऋतु शर्मा के साथ साथ इस समय हमारे साथ रवि शर्मा जी भी हैं। और रवि शर्मा जी कहां पर हैं और हमारे साथ क्या शेयर करने जा रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हेलो रवि जी, हाउ आर यू?
1: हेलो हेलो ऋतु, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम तीर्थ स्थान कह सकते हैं आप इसे, बहुत बड़ा, जहां पर राजा और रंक जो है सब आ चुके हैं माता देखने प्रणाम करने के लिए। और इस समय यहां से एक बहुत खूबसूरत यात्रा शुरू होने लगी है। आप जानती हैं कि दिवाली स्टोरी नाम से जो बहुत बड़ा फंक्शन सितंबर में वैमली अरीना में हो रहा है, ओबो अरीना वैमली में, तो उसके पूर्व दिवाली स्टोरी की लॉन्च यहाँ से हो रही है। ये स्वामी नारायण स्कूल है, बिल्कुल स्वामी नारायण मंदिर के सामने, और यहाँ पर भगवान श्री राम, उनका परिवार और दूसरे कलाकार जो है वो बड़े शानदार तरीके से शुरू करने वाले हैं। और कुछ संत भी यहाँ पहुंचे हुए हैं इस बस को कोच में, जिसमें यात्रा करेंगे। आज पूरे लंदन को हम भगवान के दर्शन कराएंगे, जहां जहां से कोच गुजरेगी, एक तो कोच पूरी जो है वो राममय बनाई गई है, उस पर सुंदर चित्रकारी है राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की, और इसके साथ ही जो कलाकार जो परफॉर्म करेंगे उनकी थोड़ी सी झलक आज लोग देख सकेंगे। ट्रफलगर स्क्वायर में ये पहुंचेगी, ये लंदन आई पर पहुंचेगी कोच, और ये इस तरह से बकिंगम पैलेस और कई जगहों पर ये कलाकार उतर के परफॉर्म करेंगे। बट रवानगी से पहले, इससे पहले कि बस की यात्रा शुरू हो, सारे कलाकार उस पर जो है सवार हों, मैं परम पूज्य परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी सत्यव्रत जी यहाँ आए हैं बस को रवानगी से पहले पूजा करने और आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं प्रणाम करता हूँ स्वामी जी, नमस्कार। स्वामी जी नमस्कार, क्या कहेंगे आप इस बस की रवानगी पर? जय स्वामी नारायण। यू वांट टू गिव अ मैसेज? इट्स गोइंग ऑन द रेडियो, हिंदी इंग्लिश, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज।
2: नो, वी आर फॉर्चुनेट हियर एट द बीआईपीएस ऑनलाइन टेंपल, नीसन टेंपल, द स्पेशल बस हैज कम एंड वी विल बी परफॉर्मिंग द पूजा ऑफ दिस बस। वंस द पूजा इज फिनिश्ड, द एक्टर्स विल बी परफॉर्मिंग हियर एज़ वेल, एंड देन द होल बस, we're going on a tour of the whole the city of London. So we are blessed that this occasion is taking place here in the Maesden Temple. And obviously we have the blessings of Bhagwan Swaminarayan, Akshabham Gunath Tanan Swami, Bhagat Ji Maharaj, Sashti Ji Maharaj, Yogi Ji Maharaj, Pramukh Sai Maharaj and Guru Hari Mohan Sai Maharaj.
0: लीजिए रवि जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी बात फिर से हो पाए, क्योंकि जान नहीं पाए। लगाते हैं उन्हें फ़ोन, देखते हैं रवि जी का फ़ोन फिर से जुड़ पाता है या नहीं, और नहीं जुड़ता है तो थोड़ी देर बाद उनसे हमारी आपसे फिर से बात करवाएंगे। लगता है रवि शर्मा जी कहीं बिज़ी हो गए हैं, उनका फ़ोन कहीं बिज़ी हो गया है, तो आपसे हम उनकी दोबारा बात करवाएंगे।
3: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज ही 1 pound के बदले में आपको मिल जाएंगे 128.3 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू रहेंगे।
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply, T's and C's apply.

0: करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
1: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000।
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 0203963-5757। ग्रीन्स बाय डैनियो, प्राइम लोकेशन,
1: हाई अप्रिसिएशन।

0: खूबसूरत धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और उस पर अनुराधा पौडवाल की आवाज लगा रही है इस गाने में चार चार।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और इस गाने को हमने लिया था अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म साजन से, जिसे आप सभी ने पसंद किया और ये गाना मेरी ओर से आप सबके लिए था। ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, लेकिन सबसे पहले आज का विचार शामिल करते हैं प्रोग्राम में, जो हमेशा की तरह हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं विजय गुडूरी जी, आपने शेयर किया है और आपने लिखा है कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाता है, वही अपने जीवन को बेहतर बनाना भी सीख जाता है। सही कहा है किसी ने, अगर इंसान दूसरों की गलती से सीख जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती, वो जब खुद गलती करते हैं तब सीखते हैं। लेकिन चाहे आप दूसरों की गलतियों से सीखें या अपनी गलतियों से सीखें, ज़रूरी यह है कि आप सीखें और उन गलतियों को बार बार ना करें। यही था आज का विचार। थैंक यू विजय जी, और आपके साथ ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं और इसमें कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं भी हमारे साथ शेयर की हैं और किन्होंने शेयर की है उनके बारे में ज़रूर बात करूंगी, लेकिन पहले एक और खूबसूरत गाना हो जाए।
1: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: जी हाँ, आशा भोसले की आवाज में था ये मीठा सा गाना और आज ऐसे ही गाने प्रोग्राम में सुनवाने का इरादा लेकर आई हूँ।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: तो संडे का दिन है, आई एम श्योर आपने सारी भागा दौड़ी कल सैटरडे के दिन कर ली होगी और क्योंकि कल मंडे से काम पर जाना है तो आप रिलैक्स होकर बैठे होंगे। और आज मौसम भी कुछ बदला है, थोड़े से बादल आ गए हैं, हल्की फुल्की बारिश भी आज हो सकती है, तो कुल मिलाकर बड़ा ही अच्छा सा एक माहौल है। तो सोच रही हूँ ऐसे ही गीतों को कंटिन्यू रखूँ। इनफैक्ट एक ऐसा ही गाना मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपके जो ढेरों मैसेजेस मिले हैं उन पर एक नजर डाल लेती हूँ। गुरुदेव गांजा कहते हैं कि ऋतु, लोग सॉरी क्यों नहीं कहते? सम पीपल नेवर से सॉरी। गुरुदेव, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता कि सॉरी क्यों नहीं कहते हैं। क्या सॉरी कह देंगे तो वो घिस जाएंगे, वो छोटे हो जाएंगे, उनका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा या घर में चोरी डकैती हो जाएगी? आई डोंट नो। इतना छोटा सा शब्द है सॉरी, कहने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। और आपकी ही समस्या नहीं, मेरी भी है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो कुछ भी कर लेंगे लेकिन सॉरी बोलने में उन्हें लगेगा शायद उनकी शान कम हो जाएगी। सही, आई डोंट नो क्या रीज़न है, मुझे पता चला तो मैं आपको बताऊंगी और अगर आपको पता चला तो मुझे बता देना, ठीक है? स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू रोशनी, थैंक यू अलका जी, आप हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एड्रेस चाहती हैं जी, हम बताएंगे आपको ज़रूर। शो का रंजीत रजवाड़ा का शो हो रहा है, बिल्कुल बताएंगे आपको थोड़ी देर में। गीता एंड हर्षा जोशी जी, महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू। एंड शबीर जी, आपने हमारे साथ चार लाइनें शेयर की हैं और कहते हैं कि टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है, हर शख्स को अपना का अपना अंदाज होता है, हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है, कोई जिंदगी में प्यार तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और कभी कभी आप आते हैं और खूबसूरत कविता हमारे साथ लाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र जी, आपने भी दोस्तों के नाम चार लाइनें शेयर की है जिन्हें बाद में पढ़ूंगी। दिनेश पोपट जी, महेंद्र बजारिया जी, हिमांशु जी, दिव्या जी, संध्या जी, भानु जी, हरीश खत्री जी, अनिल जी, सुरजीत जी, मनीषा शाह, आज आपके हस्बैंड अपनी हैप्पी वाली बर्थडे मना रहे हैं और आप चाहती हैं कि उनके लिए एक गाना बजा दूँ, और आपने गाना भी बताया है, लेकिन जो गाना आपने बताया वो आप ही गा दो ना, कितना प्यारा गाना है। मैं आपके लिए दूसरा गीत लगवाती हूँ, इनफैक्ट जो अगला गाना है ना, मनीषा जी के हस्बैंड जी के लिए जाता है।
2: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM।
1: फील गुड क्लासिक्स नॉन स्टॉप विद रितु शर्मा, दिस इज लाइका गोल्ड।

0: लीजिए किशोर कुमार की आवाज में ये गाना मनीषा शाह जी के हस्बैंड जी जो आज अपनी बर्थडे मना रहे हैं उनको डेडिकेट करते हैं। और आपने लिखा है कि रितु हाउ आर यू, आपने हमारे राम शो देखा, आपको बहुत अच्छा लगा। और आपने ये भी लिखा है कि लास्ट में रावण जो लक्ष्मण को सीख देते हैं वो लाइफ में सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर दिखाया गया था और वो बहुत ही सुंदर लाइंस थी जो आशुतोष राणा ने एज ए रावण बोली थी। और आशुतोष राणा इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी अच्छी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि जब मैंने उन्हें इंटरव्यू किया तो हर बात को उन्होंने इतनी खूबसूरती से बताया। और क्या हिंदी बोलते हैं, मतलब उनसे बात करके मुझे मज़ा ही आ गया। अगर आप उस इंटरव्यू को सुनना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है हमारे लाइका गोल्ड के फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी है, आप सुन सकते हैं। और मैं उसको कई बार सुनती हूँ और मुझे लगता है कि यस आई एम सो लकी कि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। और शो तो कमाल का ही था और प्रॉमिस तो करके गए हैं कि अगली साल फिर से आएंगे। अब देखते हैं कुछ नया लाते हैं या फिर से हमारे राम एक बार होता है, क्योंकि बहुत सारे साथी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया, हम शो देख ही नहीं पाए। तो भाई मैं यही कहूंगी कि आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए और फिर आप हमसे ये ना कहें कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला।
1: Holiday breaks are brought to you by South Old Travel.
0: और हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ ओल्ड ट्रैवल को फ़ोन कीजिए, दुबई के लिए टिकट्स बुक कीजिए 02085748410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ।
1: Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: With National Express, it's the summer of yes, the summer of possibilities, the summer of
3: next stop airport,
2: the summer of
3: absolute anthems,
2: and the summer of last minute plans. With over 100,000 one-way tickets for £7 or less, get out there and say yes to all of it. The summer of yes with National Express. Includes booking fee, online only. Travel before 30th of September 2026. Selected routes subject to availability, terms online.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
5: Location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved, that fits your life. Start

0: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउस लो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
1: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
3: कैरेटिनो बेटर घी, द हेल्थियर लो प्राइस कोलेस्ट्रॉल free butter ghee alternative, Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
4: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
5: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Yeh Yavo. Only Leica Gold.

0: बप्पी दा ने ये बिल्कुल अमर धुन बनाई है और हमारी मालती जी का कहना है कि क्या ब्यूटीफुल गाना है। बिल्कुल सही कहा आपने, आप हमारा साथ दे रही हैं, स्वागत है आपका इस शो में मालती जी। और उससे पहले गीत गाता चल जसपाल सिंह की आवाज़ में। दोनों गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हुआ है और आप सब साथ दे रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की हमारी जोड़ी नंबर वन है बॉलीवुड के ही में धर्मेंद्र और आशा पारेख की जोड़ी। दो गाने सुनवाऊंगी, इनफैक्ट अभी बस शुरू करने वाली हूँ आज की जोड़ी नंबर वन का सिलसिला। लेकिन उससे पहले थैंक यू निर्मला जी आपके मैसेज के लिए। संध्या भाव सर थैंक यू कहती है, ओ लाइका वाली ऋतु, ओ गाड़ी वाले गाड़ी, धीरे हाक रे मेरे नाम कर दो ये गाना। चलिए हमने आपके नाम कर दिया आप भी क्या याद रखेंगी। वीरेंद्र चौधरी जी थैंक यू, आपने याद दिलाया है कि आज कारगिल विजय दिवस है और आप 2012 में उस जगह पर भी गए थे अपनी पत्नी के साथ, लद्दाख गए थे जहां पर टेम्परेचर सर्दियों में -60 डिग्रीज का होता है और आपने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। क्या बात है, हम सभी भारतवासियों को आप पर गर्व है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई है उन पर तो हमें हमेशा गर्व होता है और होना भी चाहिए। सो थैंक यू विजय वीरेंद्र चौधरी जी साथ देने के लिए। अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चुकी हैं। और राजकुमार जी सभी को रविवार की प्यार भरी राम राम भिजवा रहे हैं, हमारी ओर से आपको भी राम राम। थैंक यू मानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नरेंद्र पांचाल जी साथ दे रहे हैं, हिमांशु पटेल जी, मिसेस पेके छियांग, राजीव पटेल जी, दिनेश सोरी, दिनेश पोपट जी, जैस्मीन, रोशनी, संतोष जी, गीता एंड हर्षद जोशी जी, थैंक यू सो सो मच। आप सभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं तो बस जुड़ते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड आपको देगा 128.3 भारतीय रुपए। और हमेशा की तरह याद रखिए, ये ट्रांसफर करवाना होगा बाय एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और अब शुरू करते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का सिलसिला। और जरा गैस करके बताइए कि पहला गाना कौन सा होगा धर्मेंद्र और आशा पारेख का। देखती हूँ कौन सही बता पाता। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सही गैस कर पाएगा। देखते हैं, कोशिश कीजिए गाना बजने वाला है अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Ye hai. Leica Gold.
2: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park, this July 31st. Kalyan Jewelers. Also at Belgrave Road, Leicester.

0: जिंदगी वहाँ सेट हो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग ऑफ टाइमलेस गजल्स द प्रिंस ऑफ गजल द यंगेस्ट गजल मेस्ट्रो रंजीत रजवाड़ा
2: नजर से
1: परफॉर्मिंग लाइव इन लंदन ऑन थर्सडे 30th of July at Harrow Arts Center. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
5: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड। कॉल 01923227274। Book your table today.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Dad.
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad. You can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated.

0: शंकर जयकिशन के म्यूजिक पर आशा भोसले की आवाज में शिकार फिल्म से था ये गाना, जो धर्मेंद्र और आशा पारीक की एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिल्म थी। और मैंने आपसे पूछा था कि बताइए जरा जोड़ी नंबर वन में आज मैं कौन सा गाना पहले बजाऊंगी, तो आप में से ज्यादातर ने कहा था साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। और ये गाना मैं अक्सर बजाती हूँ, इसलिए आज मैंने दूसरा गाना चुना था। वो गाना भी बहुत खूबसूरत है, किसी और दिन सुनवाऊंगी, लेकिन इस गाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। कि ये गाना दरअसल म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन पहले लता जी से गवाना चाहते थे, और जब लता जी को इस गाने के बोल पता चले कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, इस गाने में लता जी को लगा कि कुछ वल्गैरिटी है। उन्होंने कहा कि आप इस गाने के बोल चेंज करो, तभी मैं गाऊंगी। तो शंकर जयकिशन बोले, गाना तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई वल्गैरिटी है नहीं। लेकिन लता जी ने कहा, नहीं है, मुझे लग रही है, मैं ये गाना नहीं गाऊंगी। और लता जी नहीं मानी। तब फिर शंकर जयकिशन ने आशा जी से ये गाना गवाया, और देखिए आशा जी ने इस गाने को क्या ब्यूटीफुली गाया कि इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। तो सोचा क्यों ना आज की जोड़ी नंबर वन में इस अवार्ड विनिंग गाने को बजाया जाए, आप सबको सुनवाया जाए, और आप सबने इसे एंजॉय भी किया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन हमारी जो संतोष जी हैं, इन्होंने दूसरा गाना सही सही पहचान लिया है कि ये कौन सा होने वाला है। तो संतोष जी बिल्कुल सही पहचाना, यानी कि आप मुझे अब समझ गई हो। चलिए, बहुत सारे मैसेजेस आपके मिले हैं, कई सारे साथियों ने साथ दिया है, और ज़्यादातर का कहना है कि मेरा गांव मेरा देश। तो आज मैंने मेरा गांव मेरा देश को थोड़ा आराम दे दिया है। चलिए सुनवाती हूँ आज की जोड़ी का दूसरा गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: ये गाने ऐसे हैं कि आप इन्हें कितनी भी बार सुन लीजिए, कभी भी ये मन से दिल से नहीं उतरते। जब भी इनको सुनते हैं उतना ही ये गाना मजा देते हैं। आज के दो छोड़ी नंबर वन के गाने मैंने आपको सुनवाए, आपने पसंद किए हैं। मोहम्मद अयूब चौहान कहते हैं कि ऋतु आपने मेरा फेवरेट गाना बजाया, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में, गा नहीं सकती। थैंक यू साथ देने के लिए। और वसंती जी एडमिंटन में आप हमें सुन रही हैं और कहती हैं आज मेरे भाई का 70th बर्थडे है मॉरिशस में, तो चलिए वसंती जी के भाई को हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। उसके अलावा अमिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, थैंक यू। महेंद्र बजारिया जी शर्फून आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। थैंक यू हंसा जी, थैंक यू गुरुदेव गांजा, थैंक यू फरजाना, थैंक यू ज्योति गिरी शाह जी, भानु जी, थैंक यू रुखसाना अफजल आप हमें सुन रही हैं, थैंक यू शेखर जी, रितेश जी, थैंक यू फरीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। और ये मैसेजेस का सिलसिला चलता जा रहा है, तो इसे चलने दीजिए, रोकिए मत। लेकिन अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स फॉर दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल। रॉयल एल्बर्ट हॉल में सोल्ड आउट इवेंट के बाद अब ये होने जा रहा है आप सभी के लिए एट ओवो अरीना वैमली में ऑन 27th September। स्टूडेंट्स के लिए एक प्री शो होगा शाम को 5 बजे से लेके 5:45 बजे तक, और मेन शो होगा शाम को 6:15 से 9:30 तक। सनातन इवेंट्स के फाउंडर नितिन पालन MBE द्वारा निर्मित और बॉलीवुड डांस स्कूल टीम की कोरियोग्राफी से सजी इस इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाली दिवाली स्टोरी को 7 स्पेशल गानों के साउंड ट्रैक और एक पूरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट की टीम के साथ स्टेज पर जीवंत किया जाएगा। जी हाँ, टिकट्स बुक कराने के लिए आप विजिट कीजिए www.diwalistory.com पर।
1: This is Ritu Sharma.
2: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10pm on Leica Gold. Make it a date.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है जिसका टाइटल है रेनवेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसे आप सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
6: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
5: सच?
6: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
7: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-506015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
10: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Sydney. Hayu toothpaste, fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidhayu, Ayurveda that fits your life.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
13: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja discusses reinvention and entrepreneurship with Meenal from Samaria Global Finance Limited.
14: Nowadays, it's getting more and more challenging because the banks, all the bigger financial institutions, all the lenders, all the investors, they have so many people approaching them on a day-to-day basis. So they need someone who can actually hit the ground running for them.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Leica Gold, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: यस कोयल सी तेरी बोली माधुर दीक्षित और अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म बेटा से लिया था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था आनंद मिलिंद का, जो एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं 90s के दौर के। और आपने सुना ही होगा कि उदित नारायण की आवाज़ थी इस गाने में, और उदित नारायण ने ऐसे अनेकों गाने गाए हैं और वो लंदन भी आ रहे हैं बहुत जल्द परफॉर्म करने के लिए अपने बेटे आदित्य नारायण के साथ। पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने उन्हें सुना था और वो भी इतना सुरीला गाते हैं कि समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग चल रही है या लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है। बहुत खूबसूरत आवाज़ है और उदित जी मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी आवाज़ अलग है, यूनिक है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। और हंस के मुस्कुरा के जो गीत गाते हैं, हर गीत में चार चांद लग जाता है, और इसलिए उनके गाने मुझे बेहद पसंद है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं उनके शो में उन्हें लाइव परफॉर्म करते हुए देखने के लिए, क्योंकि पहले भी देख चुकी हूँ, उनसे मिल भी चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा उन्हें देखने का मौका मिले। और जब आपके फेवरेट सिंगर आपके सामने गाएं तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और यस, उदित नारायण लंदन में परफॉर्म करने आ रहे हैं और हम सबको मौका मिलेगा उन्हें लाइव सुनने का।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £97.9 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: ये है
4: Leica Gold.
5: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi तड़का is total risk, है ना?
6: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
7: Himalaya carpets की धधकती हुई sale, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई sale, room size agreements 30 pounds से शुरू, तमाम roll stock पर mark prices पर 20% off. Laminate flooring from 9 pounds a square meter. LVT flooring from 12 pounds a square meter. Rugs, beds, sofas, sab par 50% off. Carpets ki to ye sabse badi sale hai. Chupiye nahi. Visit himalayacarpets.com or come at Himalaya Carpets South Hall. Opposite the Ealing Hospital.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danu. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
11: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
10: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
11: Call us today on 0208-706-0915. That's 0208-706-0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
10: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply. Hare
13: Krishna. Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
17: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewellers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park, this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
18: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
19: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: मिस्टर नटवरलाल फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले एक काला पत्थर फिल्म का गीत आपने सुना। और इन दोनों गीतों के साथ बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कहते हैं कि हमें ये दोनों गाने बहुत पसंद हैं। रोशनी जी, मिसेस पे के चियांग, भारती जी, बेल्जियम से प्रीति जी और हमारी आंटी जी। ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन का गाना बजे और आंटी जी का मैसेज ना आए, ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो चलिए आप सभी के नाम पर करती हूँ ये गाने जिन्होंने पसंद किया है, और ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस शो में जिसे आप सुनते हैं एवरी वीकेंड सैटरडे संडे 10 से 1, और मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा, आपका साथ देने के लिए हाजिर हो जाती हूँ। और देखिए, पता ही नहीं चला हम कब इस लास्ट वाले आवर में एंटर हो गए। अब बस अब तो इस वाले आवर में आपको मैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवाऊंगी, और होगा हमारा ट्रिवर्स गेम भी, और साथ ही साथ आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत भी बजेगा, जो अब से बस थोड़ी ही देर में बजने वाला है, क्योंकि इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है हेमा मालिनी। लेकिन उससे पहले शुरू कर देते हैं आज के ट्रिवर्स गेम की। आपको पता ही है कि ये जो तीन वर्ड्स होते हैं ये मैं बॉलीवुड के एक गाने से लेती हूँ, और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज के जो तीन वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है दीवाना, दूसरा है बेगाना, और तीसरा है अपना। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। 1969 में आई थी ये फिल्म, और इसमें म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कौन सा गाना हो सकता है? बहुत पॉपुलर गीत है। आई रिपीट वंस अगेन, दीवाना, दूसरा वर्ड है बेगाना, और तीसरा वर्ड है अपना। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ें हैं, 1969 की फिल्म है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। अगर आपको पता चल गया है तो अपना मैसेज भिजवाइए जल्दी से हमारे इस नंबर पर। और ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये हमारा रेगुलर थ्री वर्ड गेम है, जिसे हम हर वीकेंड यानी कि मेरे अपने शो में लास्ट वाले आवर में खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा है ये गाना।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो
1: यूके ब्रांच।
0: तो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया एसबीआई ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Yeah, like a gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.

0: देवानंद और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज था ये गाना, और ये गाना था हमारे आज के आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गाना, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो से। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू सो मच राजेश जी आपके मैसेज के लिए। आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले मॉर्निंग में वहाँ बारिश हुई थी और बारिश आने से आप खुश हो गए थे और बारिश जल्दी शुरू हो गई, लेकिन अब मेरा शो भी खत्म होने वाला है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरा शो तो खत्म होने वाला है लेकिन शायद बारिश फिर से आ जाए जो आपको खुशी दे। और आजकल ये बारिश हमें खुशी दे रही है, क्योंकि गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। सो थैंक यू, स्वागत है आपका इस शो में। आप सुबह से मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा ही साथ देते हैं। इसके अलावा मुझे आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, थ्री वर्स गेम चल रहा है और बहुत सारे साथियों ने सही पहचान लिया है गीत को, कुछ एकाध को छोड़कर। लेकिन कोई बात नहीं, गाना कौन सा है मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले एक खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं।
1: ये है लाइक अ गोल्ड 10:35 AM।
0: और आपको बता दें कि ये खबर जो है वो माता पिता के लिए है एक महत्वपूर्ण सूचना। आपके बच्चे को जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उसके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशन समय पर लग चुके हों। टीके जो हैं वो आपके बच्चे को खसरा और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदायों में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर वर्ष 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं, और ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो भी आप अपने GP से संपर्क करके वो छूटा हुआ टीका पूरा करवा सकते हैं। क्या आपने बच्चे के सभी टीके समय पर लगवाए हैं? अपने बच्चे की रेड बुक में देखें या फिर अपने GP प्रैक्टिस से बात करें। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर आप जा सकते हैं। तो ये तो थी जरूरी जानकारी, और अब

0: शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाते हैं आपको पहला गाना मुकेश जी की आवाज में।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: सलील चौधरी के म्यूजिक पर मुकेश की आवाज में ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। और थ्री वर्स गेम हमारा चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है और वो कौन है वो बताऊंगी, लेकिन फिलहाल सुनवाऊंगी एक और, यानी कि आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Riti Sharma on Like a Gold.
0: और इस बार इस गाने में आवाज है किशोर कुमार की।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: तो रंगोली फिल्म से लिया था ये गाना, जिसमें किशोर कुमार खुद थे और साथ में थी ब्यूटीफुल वैजयंती माला। विजय जी, आपको ये गाना डेडिकेट करते हैं, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
0: और आपको याद दिला दें कि भाई अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो दुबई हो आइए, अच्छी डील्स चल रही हैं साउथोल ट्रैवल पर। उन्हें कॉल कीजिए 02085748410 पर। इट ऑल प्रोटेक्टेड है सब कुछ।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और अब थोड़ी ही देर में सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, लेकिन उससे पहले बता दूँ हमारे किन साथियों ने आज के गाने को बिल्कुल सही सही पहचाना है। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है कुकी, आपने बिल्कुल सही बताया है, दामिनी बहन, नरेन पटेल जी, रोशनी, करसन पिंडोरिया, उल्लास, दिव्या जी, हैरोसे अर्जुन जी, विजय गुडोरी जी, अयूब चौहान, सहर, गीता हर्षद जोशी, सुरेश पटेल, उषा खोड़ा, तोची, मनीषा शाह, शरफून, संध्या भावसर, महेंद्र बजारिया। आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। और सुरेश पटेल जी, आपके मैसेज से मुझे याद आया कि यस, आप हमसे मिलने आए थे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इतनी दूर से आप वटवट से हमें बीकानेर वाले शो की ओपनिंग में मिलने आए थे, खूब मज़ा आया आपसे बातें करके, आपसे मिलके, सो थैंक यू। और बस सभी ने जवाब सही दे दिया है, तो फिर देर किस बात की है, थोड़ी देर में बजा देती हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com.
4: If you're ready to grow your business, at Barclays we say, let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages. Mortgages, the broker that gives you back.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
9: To fly back home this summer holiday, come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
3: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: Budget tight, पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: आंसू बन गए फूल, ये था फिल्म का नाम और इसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस फिल्म में काम किया था देव मुखर्जी ने। देव मुखर्जी जो जॉय मुखर्जी के छोटे भाई थे और इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है लेकिन इनकी फिल्में ज़्यादा चली नहीं और फिर कुछ और फिल्मों में ये विलन भी बनकर आए हैं और साथ में इनकी एक नई हीरोइन थी अलका। गाने अच्छे थे, ये गाना ख़ास तौर पर काफ़ी पॉपुलर है लेकिन फिल्म के बारे में मैं इतना नहीं जानती हूँ। लेकिन ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना जिसे ज़्यादातर साथियों ने सही सही पहचान लिया था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: तोशी जी, आपके फ़ोन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव गांजा, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। जासू जी, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू जैस्मीन, थैंक यू भारती जी और बहुत सारे आज ऐसे नाम हैं जो छूट गए हैं लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शो में हमेशा ही पार्टिसिपेट करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। बस अब क्या, जाने की बेला आ ही गई।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £97.95 per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: ये
2: है
0: लाइका गोल्ड। अगला गाना लेकर चलेगा आपको न्यूज तक और न्यूज के उस पार अनुराग लाइका गोल्ड पर आपका साथ देंगे। लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आज हमारे एक नए प्रेजेंटर हैं जय, जो एक से चार आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाएंगे और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी आपके साथ आनंदी एक से चार। और अब मैं ऋतु शर्मा आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ, अगले हफ्ते आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए और फिर कहूंगी कि अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर कभी भी इस शो को आप दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं सुन पाएंगे, 3-4 घंटे लगते हैं शो को अपलोड होने में, तो उसके बाद आप इसे कभी भी सुन सकते हैं कितनी भी बार। और अगर आप लाइका गोल्ड 2 सुनना चाहते हैं जो कि हमारा ऑनलाइन है जिस रेडियो स्टेशन है जिसमें बैक टू बैक क्लासिक सुनवाए जाते हैं, लाइका रेडियो 90s है जिसमें 90s के गीत आते हैं नॉनस्टॉप और लाइका रेडियो पंजाबी है ऑनलाइन जिसमें आप पंजाबी गीत सुन सकते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मर्जी सुनिए। बस अगले हफ्ते तक इंतज़ार कीजिए क्योंकि मिलूंगी मैं आपसे अगले हफ्ते फिर से। ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।
4: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by morning mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
5: This is Leica Gold.
6: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things, because it's time to move on from that ex.
7: Goodbye.
6: But don't let your plans get derailed. No. Choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: लंदन, आर यू रेडी? राघव एंड प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां This December.
11: मैं निकला ओ गट लेके आए हो मेरे।
10: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London.
11: मेहंदी लगा के रखना।
10: Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events.
11: मैं यहां।
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
13: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
14: बीकानेर वाला परंपरा भी,
15: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB, कॉल 07795181001।
16: Location.
17: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
16: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
17: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
16: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
17: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
16: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
17: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
16: High appreciation.
17: In Dubai.
18: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
19: Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
20: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
5: Up next, Golden Rock with Unrock on Leica Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: किशोर दा और अलीशा चिन्हई जी की आवाज के साथ हमने किया है आगाज इस घंटे का सुपर संडे वाली महफिल का। मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गाना सुन रहे थे आप। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन एक और गणमान्य सदस्य हमारी टीम के जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो इस वक्त दिवाली स्टोरी कवर कर रहे हैं और इनका नाम हर किसी की जुबान पर होता है। रवि शर्मा जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं रवि जी?
1: रौनक है। आज मैं उस इवेंट को प्रचारित प्रसारित करने के लिए कलाकारों के साथ एक खुली बस में यात्रा कर रहा हूं और मेरे साथ कितने कलाकार हैं देखिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बस में कलाकार भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, कैमरामैन भी हैं। आप जानते हैं 27 सितंबर को
0: जी,
1: ऑन 27th of September देयर इज अ बिग बिग इवेंट इन वेम्बली ओवो, और उसकी जो यूं कहिए कि लॉन्च पार्टी आज की है। इन्होंने मेकअप में प्रदर्शन किया है स्वामी नारायण मंदिर में, वहां से कोच में सवार होकर हमारे साथ राम और सीता जी भी है, यानी पूरे कॉस्ट्यूम में मेकअप में वो जैसे रामलीला में इन्होंने प्रस्तुत करना है
0: जी।
1: तो आपको बता दूं अनुराग, ये कार्यक्रम 27 सितंबर को फैमिली के विशाल स्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा
0: जी।
1: इसमें संगीत भी होगा, संवाद भी हो गए, यानी रामलीला का भगवान श्री राम का जीवन चरित्र
0: जी
1: संक्षिप्त में और बड़ी अच्छी तरह से। पहले बचपन में जो रामलीला देखते थे हम, उसका नया रूप जो है बिल्कुल इक्विपमेंट के साथ, लाइट एंड साउंड के साथ, सारी सुविधाएं और म्यूजिक, और अंग्रेजी में संवाद होंगे
0: जी
1: तो बच्चों को समझ में आ सकेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग राइट नाउ दैट ब्रिंग योर चिल्ड्रन इफ यू वांट टू टीच देम योर मर्यादा, योर हिस्ट्री, योर गौरव है, जो प्राउड इतिहास है भारत का, संस्कृति है, और उसके त्रेता युग के इस महान कथानक को। आप जानते हैं रामलीला के माध्यम से ही हजारों बरस पुरानी रामलीला आज हमारे साथ है, यू नो, बिकॉज वी हैव बीन वॉचिंग रामलीला, द चिल्ड्रन आर लिसनिंग वेरी कीनली। ओके, तो ये सब वो परफॉर्म कर रहे हैं तो इनकी जानकारी बढ़ेगी, इनको जो देखेंगे उनकी जानकारी बढ़ेगी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: स्टोरी नाम से, हाँ, दिवाली स्टोरी नाम से ये इवेंट 27 सितंबर को हो रहा है और हम लोग अभी लंदन में देखो हमारे आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंगे हैं, लोग खिड़कियों से झांक के थोड़ा बहुत देखते हैं और भगवान के दर्शन, क्योंकि कोच की पूरी बॉडी पर वो दिवाली स्टोरी जो है वो छापी गई है, भगवान राम सीता लक्ष्मण हनुमान ये कोच के ऊपर बने हुए हैं
0: जी,
1: और बीच में कलाकार बैठे हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे जुड़ूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि लंदन में हमने अयोध्या बसा रखा है और जोर से अब देखो सारे कलाकार बोलेंगे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।
0: तो पूरा जोश पूरा उत्साह है वहाँ पर, और हम आपके माध्यम से भी बाकी सारे हमारे लिसनर्स को ये अप्रोच करेंगे कि भाई इस दिवाली स्टोरी का वो भी हिस्सा बने। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे दोबारा अपडेट के लिए। हम
1: बेकर सीट के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सभी लिसनर्स को, फिर कहूंगा 27 सितंबर अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, वी विल सी यू देयर इन वेम्बली अरेना। थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच।
1: रवि शर्मा रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम A40।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन आपको इंडियन करेंसी में मिल रहे हैं एक पाउंड के बदले 128 रुपीज 30 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश Tell on 0208-922-3344 24-hour line.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Himalaya Carpets की धड़कती हुई सेल. गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल. Room size remnants 30 pounds से शुरू. तमाम roll stock पर mark prices पर 20% off. Laminate flooring from 9 pounds square meter. LVT flooring from 12 pounds square meter. Rugs, beds, sofas सब पर 50% off. Carpets की तो ये सबसे बड़ी सेल है. चूकिए नहीं, विजिट हिमालयकारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
7: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
4: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
7: सच?
4: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
8: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2-6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
9: Dad.
10: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
10: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
10: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 02088390880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
14: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
13: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
14: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
13: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
14: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
15: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
16: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
15: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
17: Hello London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park, this July 31st.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ravi saab ki awaaz mein abhi aap Ziddi film ka gaana sun rahe the. Aur ek choti si zid lekar hamare saath ek bahut hi khaas mehman. मेहमान तो नहीं है, आप लोगों के जान पहचान के हैं, आप अक्सर उन्हें सुनते हैं. उनका नाम है सैंडी जी और वो इस वक्त हैं स्टूडियो में. और उनको मैंने एक चैलेंज किया है. चैलेंज ये है कि आज के गोल्डन रा के जो तीन ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, उनमें से एक ऑप्शन बताने जा रहे हैं सैंडी जी. और दावा ये भी होगा इसके साथ में कि वही गाना आज का गोल्डन रा बनेगा. सैंडी जी, स्वागत है आपका. कैसे हैं?
3: काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई तुमसे.
2: जी
3: ठीक हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ.
3: कैसा जा रहा सब कुछ?
2: आज आपने सरप्राइज दिया, पहले तो उस पर हम लोग बात करते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए स्टूडियो से बाहर गया और उसके बाद सैंडी जी से मेरी बात हुई और वो स्टूडियो के अंदर थे. अब सोचिए कि जो होता है ना, दिल हलक तक आ जाना, वैसा ही हुआ है आज.
3: बहुत ही फिल्मी डायलॉग तुम फेंकते हो.

0: बहुत ही ज्यादा, तुम बदले नहीं हो वैसे, जब से तुम्हें जानता तुम्हारे फिल्मी डायलॉग नहीं खत्म होते।
1: जी जी
0: हाँ जी।
1: अच्छा आपका ये चैलेंज,
0: हाँ जी,
1: जो आपको मैंने किया है,
0: मुझे ये नहीं पता अगर रिसेंटली एक गाना लगा या नहीं लगा, लेकिन अगर आप तीन गाने चुन रहे हैं और मुझे एक दे रहे हैं
1: जी,
0: तो फिर आप वो टाइटल ट्रैक का, रफी साहब का पत्थर के सनम।
2: पत्थर के सनम,
0: जी हाँ, टाइटल ट्रैक
2: पत्थर के सनम। वैसे आप दो भी गाने दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
0: नहीं, मैं तुम्हारा काम इतना आसान नहीं करने वाला, ऐसी कोई बात है नहीं वैसे।
1: तो आपको ऐसा लगता है ये जो मैं इसके साथ में दो गाने और शामिल करूंगा गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस में से, तो ये गाना आज का गोल्डन राग यानी कि विनर हो सकता है?
0: लगता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, तब क्या बोलते हैं उसको ना, तजुर्बे के,
0: गाने की बुनियाद पे जैसे ये गाना गाया हुआ है जिसने गाया है
1: जी,
0: 100% जीतना चाहिए, लेकिन डिपेंड होता है आप बाकी के दो गाने कौन से चुने।
1: नहीं लेकिन चलिए, बिल्कुल बात सही है आपकी, ये तो हम हमारे लिसनर्स पे छोड़ देते हैं, लेकिन इस गाने के पीछे की थोड़ी सी स्टोरी हमें बताइए, क्यों आपने ये गाना चुना, आपके जहन में क्यों आया?
0: एक तो एकदम ये मेरे जहन में आया था, इसकी यही कहानी है कि ये जब गाना पहले बनाया गया था तो जो इस फिल्म के स्टार थे मनोज कुमार
1: जी,
0: वो नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब ये गाना गाएं, क्योंकि उस वक्त मुकेश उनके बहुत गाने गा रहे थे।
1: अच्छा।
0: और वो यही चाहते थे कि ये मुकेश ये गाना गाए, और काफ़ी देर के लिए ये बात रुक गई थी कि गाना जो म्यूजिक डायरेक्टर वो कहते हैं ये रफ़ी साहब के लिए बनाया है, मनोज कुमार कहते हैं, मनोज कुमार ने जाके फिर डायरेक्टर से बात की कि ये जो गाना है ये मुकेश के पास जाना चाहिए, वही मेरी आजकल आवाज़ है, उनको ये गाना दें। लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा देखो ये जो गाना है जो इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाया है ये सिर्फ रफ़ी साहब के लिए बनाया है, तो मुझे लगता है आप यही रहने दें। और लक्ष्मीकांत जी ने कहा था कि ये गाना हाई पिच पे है।
1: अच्छा।
0: और मुकेश साहब हाई पिच पे नहीं गाते, तो इसलिए ये गाना सिर्फ उनके लिए। तो काफ़ी देर आगे पीछे बात हुई, लेकिन इवेंचुअली वो मान गए क्योंकि डायरेक्टर ने कहा नहीं, जो उन्होंने कहा वही होगा। और कमाल की ये बात है, ये गाना उस फिल्म का सबसे कामयाब गाना निकला,
1: कामयाब गाना। वैसे आपने, जब से आपसे मैंने सीखना शुरू किया है, आपने कई ऐसी स्टोरीज बताई हैं, कई ऐसे वाकयात बताए हैं रफ़ी साहब के बारे में, कई और दिग्गज सिंगरों के बारे में, जो जिनके लिए पैसे प्रायोरिटी नहीं थे, उनके लिए काम प्रायोरिटी था। तो रफ़ी साहब का, जैसे कि आपने ये भी एक किस्सा बताया, कुछ और बताना चाहेंगे एक लाइन में, जो रफ़ी साहब के फैंस के लिए अनसुना हो अब तक?
0: मेरे यार लोगों ने कहना कि रफ़ी साहब का कहाँ से बीच में आ गया तुम्हारे गोल्डन राग में।
1: आपको पता ही है रफ़ी साहब के गाने बहुत सारे प्ले होते हैं।
0: मैं यही कहूँगा कि अनगिनत गाने हैं जो रफ़ी साहब ने नए प्रोड्यूसरों के लिए गाए थे, नए डायरेक्टर के, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास, लेकिन उनकी यही ख्वाहिश थी कि रफ़ी साहब एक हमारे लिए गाना गा दें। तो कई बार रफ़ी साहब ने ये भी कहा आपकी जेब में इस वक्त जो भी है 10 रुपये वो भी चलेंगे अगर आपको देने हैं।
1: क्या बात है।
0: और मुझे ये भी याद है कि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहली बार दोस्ती का साउंडट्रैक किया था, जितनी भी फीस रफ़ी साहब की थी, क्योंकि रफ़ी साहब उनको जानते थे जब से वो एडवर्ट्स का म्यूज़िक करते थे और वो जानते ये उभर रहे हैं कलाकार, तो जब उन्होंने उनको फीस दी थी रफ़ी साहब को, रफ़ी साहब ने वो पूरे पैसे वापस करके कहा ये मेरा तुम्हारे दोनों के साथ आशीर्वाद है।
1: क्या बात है। आखिरी सवाल बहुत जल्दी से आंसर दीजिए, कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बड़ा करीब है और लता जी के साथ रफ़ी साहब ने उस गाने को गाया हो, जल्दी से एक दूसरा। अब गोल्डन राग,
0: सारे नज़ारे दो रास्ते,
2: छुप गए सारे नज़ारे,
1: आज ये गाना छुपने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया चंडी जी,
0: मेहरबानी,
1: आपने हमें इतना वक्त दिया,
0: जबरदस्ती ये बात करवा ली आज मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी सुने, अगर आप पुराने गाने सुनना चाहते हैं तो प्लीज विंटेज गोल्ड 7 बजे शाम को।
1: बिल्कुल, डेफिनेटली। और कुछ गाने विंटेज गोल्ड से आज मैं आपको चुरा के भी सुनाने वाला हूँ, सामने चोरी अपनी कन्फ्रेस कर। थैंक यू सो मच सनी जी। ऑन रॉग विद गोल्डन रॉग।

0: किशोर दा की आवाज में कल आज और कल फिल्म का ही गाना था, लेकिन सब कुछ आपको आज ही इस सुबह संडे वाली महफिल में मिलने वाला है। अगला गाना लता जी और अमित कुमार साहब की आवाज में बड़ा ही नटखट गाना है, लव स्टोरी 1981।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइक अ ग्रुप।
2: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: कैसा तेरा प्यार, कैसा तेरा गुस्सा है। लव स्टोरी फिल्म का 1981 का ये गाना हमने आपको सुनाया। 1981 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म ने आते ही अपना कमाल दिखाया था, खास तौर पर युवा जनरेशन्स के लिए ये गाना कमाल का था। और अगला गाना हम आपको सुनाएंगे रफी साहब लता जी की आवाज में, छोटे से अंतराल के बाद। फिल्म का नाम है ताज महल।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. ये है Like a Gold. Like a Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you. Start to

0: आशा दाई और अमित कुमार साहब की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इल्जाम फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना। और इससे पहले हमने आपको सुनाया था 90s की धड़कन, पहला नशा, उदित साहब और साधना सरगम जी की आवाजों में। फिल्म का नाम था जो जीता वही सिकंदर। और आप लोगों ने जीत के साथ शुरुआत की, इसलिए आप ही हैं हमारे सिकंदर। और ये गाना हम तक पहुंचाया था पहला नशा विजय जी और उल्लास जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और सेकंड सॉन्ग प्रीति कंचन पंकज और शालिनी जी की फरमाइश की पटारे से निकल कर आया था। इल्जाम फिल्म का गाना बहुत ही खूबसूरत, इसलिए हमने आपको ये गाना सुनाया है बैक टू बैक हमारे गानों में। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला गाना किसकी फरमाइश की पटारे से निकल कर आया? भाई दिमाग की बत्ती तो आपकी जली है और बड़ा ही प्यारा सा गाना हम तक पहुँचा भी है। फिलहाल इतना सा हिंट देते हैं, ये गाना आ रहा है बेहद ही खूबसूरत आवाज़ों में और ये सुरबाज हैं लता जी और रफी साहब। थोड़ी देर में इस गाने का आनंद उठाते हैं। थोड़ा सा पुराना गाना है, महाराष्ट्र में बोला जाता है जूना सॉन्ग, जूना गाना। तो चलिए आपको एक जूना सा गाना सुनाते हैं, लेकिन बड़ा ही प्यारा सा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.30 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like our gold.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
7: Sham chalne lage.
6: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
10: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
10: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: You know that clean, fresh feeling after brushing? Sidayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sidayu, Ayurved that fits your life.
13: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
14: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
15: Bikaner wala parampara bhi.
16: Famous
15: बस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, एल्फर्ड, IG26HA, कॉल 07555-506015।
16: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
17: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. Minar Jewelers, best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
18: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
19: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: कहा था ना लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गाना होने वाला है, बड़ा ही बेहतरीन. जब प्यार किसी से होता है फिल्म 1961 में आई थी. वैसे 90s में सलमान साहब की भी एक फिल्म आ चुकी है जब प्यार किसी से होता है, लेकिन ये प्यार वाला गाना हम तक पहुंचाया था सुमिला मुंगुर जी और अमर जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खूबसूरत से नगमे को इस महफिल में, सुपर संडे वाली महफिल में शुमार कराने के लिए. अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है? है तो ये गाना विंटेज लेकिन कमाल का है भाई.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
3: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. On Rug with Golden Rug. Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: लेके पहला पहला प्यार, रफी साहब, शमशाद बेगम जी और आशा दाई की आवाज में CID फिल्म का ये गाना 1956 में फिल्म आई थी और ओपी नैयर साहब ने इस फिल्म का दिया था संगीत। फिल्म में नजर आए थे देव साहब, शकीला और वहीदा रहमान जी। और ये गाना हम तक पहुंचा है बहुत सारे लोगों ने, संतोष जी, करसन पिंडोरिया, अर्जन जी, विजय जी और काजल जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को चुनने के लिए और इस महफिल में शामिल कराने के लिए। अगला गाना आ रहा है एक बार फिर से रफी साहब की आवाज़ में, लेकिन गाना है बड़ा मस्त। उससे पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: तो भाई दुबई जाने के लिए बेहतरीन डील्स के लिए आप संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए Southall Travel को। मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स के लिए नंबर है 0208-574-84-8410, at all protected.
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: ये है Leica Gold 10:35 AM.
3: Leica Extra podcast update.
1: Leica Extra new episode podcast episode number 26, title Renovation and Entrepreneurship. Mention one और दीप राजा इस बार होंगे हमारे होस्ट। लाइका एक्स्ट्रा का पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। तो इस पॉडकास्ट से जुड़ना आप बिल्कुल भी मत भूलिए, तमाम सारी नई जानकारी और नए क्लेवर के साथ।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: ये है
5: लाइका गोल्ड
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price
6: at all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
9: Goodbye.
8: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
13: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी।
12: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
13: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
12: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 0192322-7274। बुक योर टेबल टुडे।
14: जा जा जा
9: Dad.
14: What's wrong, beta?
9: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
14: I will run down to the money exchange now.
9: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the YONO SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
14: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the YONO SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
15: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
16: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
17: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
16: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
17: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
16: दर्शन पण अने यूरोप पण.
17: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
16: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स.
17: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
18: लंदन आर यू रेडी? राघव एंड्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड उदित नारायण एंड सन आदित्य नारायण परफॉर्मिंग लाइव विद बड़े मियां छोटे मियां दिस डिसेंबर. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Attention, the ITEC Desi Independence Food Festival and Trade Week is on from the 3rd to the 9th of August at ITEC Cash & Carry Southall with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX or call 0203 393 5225. ITEC Wholesale, open 24/7, everything your business needs, all under one roof.
19: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja discusses reinvention and entrepreneurship with Meenal from Samaria Global Finance Limited.
20: Nowadays, it's getting more and more challenging because the banks, all the bigger financial institutions, all the lenders, all the investors, they have so many people approaching them on a day-to-day basis. So they need someone who can actually hit the ground running for them.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
21: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: रफी साहब की आवाज में बेहद ही शानदार गीत जिंदगी फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे। 1964 में ये फिल्म आई थी। संगीत आया था इस फिल्म का शंकर जयकिशन साहब की तरफ से और इस फिल्म के गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। खास तौर पर गीत जो लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने लिखे थे और तमाम गाने इस फिल्म के, खास तौर पर मेरा जो पसंदीदा गाना है हम प्यार का सौदा करते हैं, बहुत ही प्यारा लता जी की आवाज़ में सोलो गाना गाया है उन्होंने और कमाल का संगीत शंकर जयकिशन साहब का और ये गाना हम तक पहुँचाया है टोची पनेसर जी और नील कंठ साहब ने। एक फैक्ट और इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था जेमिनी पिक्चर्स की तरफ से और इस फिल्म की कामयाबी को देखते हुए अन्य भाषाओं में भी इस फिल्म को बनाया गया। तमिल वर्जन में इस फिल्म का नाम था वाचकाई पुडुंगू और तेलुगु में आडा ब्रथुकू नाम से, जो 1960 फिल्म में ये दोनों फिल्में आई और सफल भी साबित हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को हम तक पहुँचाने के लिए। अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है, जल्दी से सुनाते हैं आपको।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए इंडियन करेंसी में आपको 1 पाउंड के बदले मिल रहे हैं आज के दिन 128.66 पाकिस्तानी रुपीस, 370.15 श्रीलंकन रुपीस, 447.89 बांग्लादेशी टका, 164.71 अफगान अफगानी, 88.87 and $1 $1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: भाई सोने के भाव सोने नहीं देंगे। Gold is currently trading at £97.95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. Leica Gold.

0: किशोर दा और आशा दाई की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ही गाना सुन रहे थे। आर डी बर्मन साहब का इस फिल्म के लिए संगीत था। बच्चन साहब, जीनत अमान, नीतू सिंह इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे। और ये गाना हम तक पहुंचाया है आयशा जी, सुनील जी और प्रभु पटेल जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और अगला गाना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मल्हार, विंटेज गोल्ड वाला ही गाना। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था चुराने वाला गाना। बड़े अरमानों से गाने के बोल हैं। जगदीश जी और करण जी ने इस गाने को हम तक पहुंचाया है। अगला घंटा याद रखें, गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस कर रहे हैं आपका इंतजार।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
2: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
5: चलो जाइए एक नवा सफर पर
6: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
7: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
6: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
7: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
6: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
8: हिमालय कार्पेट की धधकती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
3: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
5: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
6: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
7: On Rug with Golden Rug.

0: भूपेंद्र सिंह साहब की आवाज में दर्द फिल्म का ये गाना दिल के दर्द को और ज्यादा कुरेद देता है। एनीवेज, बहुत ही प्यारा ये नगमा हमने आपको सुनाया बैक टू बैक गानों के बाद। अब मौका आ चुका है आपको आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस बताने का। भाई, इस कंपटीशन के कायदे प्लस कानून बड़े ही आसान से हैं। हम आपको तीन ऑप्शन देंगे जो कि गानों के होंगे ए बी एंड सी। जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए उसे वोट की तरह कास्ट कीजिए और जिस गाने को लेकर, जिस ऑप्शन को लेकर हम तक सबसे ज़्यादा वोट्स रिसीव होंगे वो गाना भारी मतों के साथ आज का विजयी गाना होगा, यानी कि आज का गोल्डन राग होगा। तो जल्दी से आपके सामने पेश करते हैं आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। याद रखिएगा, इसमें से एक ऑप्शन आया है सैंडी जी की तरफ से और देखते हैं कि वो गाना आज का विजेता बनता है या नहीं बनता है। और बाकी के दो गाने आज मेरी तरफ से, वैसे नॉर्मली तीनों गाने मेरी तरफ से होते हैं, लेकिन आज इस इन तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, पत्थर के सनम का टाइटल ट्रैक, फिल्म का नाम भी है पत्थर के सनम, ये गाना आया है सैंडी जी की तरफ से। ऑप्शन बी है तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है। एंड ऑप्शन सी है मैं तेरे प्यार में पागल, फिल्म का नाम है प्रेम बंधन। याद रखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है पत्थर के सनम, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम और ये फिल्म का टाइटल ट्रैक है। ऑप्शन बी है तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। और ऑप्शन सी है मैं तेरे प्यार में पागल, फिल्म का नाम है प्रेम बंधन। और इसी के साथ आपको बता दें कि वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं शुरू, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीज़ 30 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: ये है Like a gold.
3: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers. Also at Belgrave Road, Leicester.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साफो ट्रेवल at all protected.
6: Recalculating. Family issue ahead. Property paperwork on the left. Immigration deadline approaching. Business dispute in 200 yards. When life takes an unexpected turn, let Rack Law Solicitors guide you with clear, trusted legal solutions. Family, property, immigration and corporate law handled with care and expertise. Call 0203-345-2000. Rack Law Solicitors. Your matters, our expertise.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है।
9: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
8: सच?
9: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
6: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-06015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड। Start to

0: लता जी और मुकेश साहब की आवाज में धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, लेकिन आपको आजादी है तेज तेज बोलने की। गोरा और काला फिल्म का एक गाना सुन रहे थे, और इसी के साथ एक बार फिर से आपको बताते हैं आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शन, जिनमें से एक ऑप्शन को आपको चुनना है, उसे भारी मतों के साथ विजयी गोल्डन राग बनाना है। ऑप्शन ए है पत्थर के सनम का टाइटल ट्रैक, फिल्म का नाम भी है पत्थर के सनम। ऑप्शन बी है तू इस तरह मेरी जिंदगी में, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। और ऑप्शन सी है मैं तेरे प्यार में पागल, फिल्म का नाम है प्रेम बंधन। वोटिंग लाइन अभी तक ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें, जो तुमको हो पसंद वो हम तक पहुंचाते रहें। ये गाने के बोल हैं, अगला गाना
1: ये है लाइका गोल्ड, फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Jo tum kaho pasand wahi baat hum kahenge. Bhai, agar aapko kisi ko khush rakhna hai to haan mein haan milaiye. Aajkal ka to yahi dastoor hai. Lekin aapko yahan par dil milana hai kyunki sangeet jo hai na पहले टच करता है आपके हृदय को यानी कि दिल को. और अगला गाना, यकीन मानिए ऐसा कोई शख्स नहीं होगा इस दुनिया में जिसे ये गाना पसंद ना हो. सुनते रहिए और याद रखिए वोटिंग लाइन्स अभी तक ओपन है. अपने अपने वोट कास्ट करते रहें और अपने प्यार से ऑप्शन को यानी कि गोल्डन राग को विजयी बनाएं.
0: ऑन राग विद गोल्डन राग.

0: जगजीत सिंह साहब की आवाज, प्रेम गीत का ये नगमा सुन रहे हैं और जग को जीत लेने वाली वाकई में इनकी आवाज, और यकीनन आप सब लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद अगला जो गाना आने वाला है उसके बाद हम आपको बता दें कि भाई बंद होने वाली है आज के लिए आज की वोटिंग लाइंस। आखिरी है मौका, लगा दीजिए चौका, थोड़ी देर में बसते होते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hi, ma'am. Cornwall is absolutely stunning. We love it here. Of course, our lathe thought he was too tough for sun cream and got sunburnt immediately.
3: Have you put on your sun cream?
2: Oh, he never learns. On the bright side, children's bus travel is free. So we've been riding him around everywhere to keep this lobster out of the sun. And we found this brilliant beach where we even saw a seal. Miss you tons. Love, Sally.
4: Enjoy great British summer savings, such as free bus travel for children this August. Funded by the UK government.
5: Like a goat. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
8: हिमालय कारपेट से धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823।
9: अटेंशन, द आईटेक डेसी इंडिपेंडेंस फूड फेस्टिवल एंड ट्रेड वीक इज ऑन फ्रॉम द 3rd to the 9th of August at ITEC Cash and Carry Southall, with unbeatable wholesale deals on rice, dairy, frozen foods, fresh produce, catering, essentials and much more. Don't miss live tastings on the 5th and 6th of August, plus exclusive offers all week. Visit Unit 123 Southbridge Way, Southall, UB2 4AX, or call 0203-393-5225. ITEC Wholesale, open 24/7. Everything your business needs, all under one roof.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
3: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime. On Leica Gold.

0: बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिस देश में गंगा बहती है, फिल्म का ये गाना सुना। और इसी के साथ आपको बता दें, आज के लिए हो गई हैं वोटिंग लाइंस बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या दिया है सरप्राइज आप लोगों ने एक दूसरे को, और भारी मतों से अपने किस ऑप्शन वाले गोल्डन राग को बनाया है आपने आज का विजेता, थोड़ी देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.60 पाकिस्तानी रुपीस 370.17 श्रीलंकन रुपीस 447.78 बांग्लादेशी टका 164.61 अफगानी 88 एंड 1 US डॉलर 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। रफी साहब की आवाज में आप तो ऐसे ना थे। जिस गाने को सबसे ज्यादा वोट्स रिसीव हुए हैं और वही गाना बना है आज का गोल्डन राग। तो जल्दी से बिना वक्त गवाए लेते हैं नाम, किसने किसने इस गाने को दिया है वोट। वैसे आपको बता दें सेकंड हाईएस्ट वोट रिसीव हुए हैं ऑप्शन ए को, यानी कि पत्थर के सनम को, लेकिन भाई चुनना तो हमें एक है। मिसेज इकबाल बेगम सबसे पहला नाम, नीलम जी, जगदीश जी, शिबानी जी, सलमा जी कैंट से, अयूब चौहान साहब, उज्मा जी, अहमद खालिद, पारुल जी, निर्मला जी, अमर साहब, संतोष जी, मिसेस सुदेश टैकर, अर्जुन जी और टोची पनेशर जी के अलावा पंकज और सुमित चौरसिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को चुनने के लिए और इस गाने को खूब सारा प्यार देने के लिए। लेकिन आपको सुनाना तो एक ही गाना था, इसीलिए इसे चुना गया है आज का गोल्डन राग। होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। नेक्स्ट आ रही है सरिता जी। अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें लाइका नेटवर्क।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।

0: What a beautiful song, very inspiring song. अक्सर रोमांटिक गाने ही प्रोग्राम में शामिल रखती हूँ मैं, लेकिन आज के टॉपिक के साथ जाता था ये गाना, तो इसलिए मैंने इस गीत को चुना. लेकिन सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छा किया कि ये गीत मैंने इतने सालों बाद प्ले किया. आई थिंक हमारे लाइका गोल्ड पर भी आपने ये गीत मेरा ख्याल 1.5-2 साल बाद सुना है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है आपने पहले सुना भी हो. फिल्म का नाम था आखिर क्यों. आखिर क्यों जे ओम प्रकाश साहब ने बनाई थी फिल्म, एंड प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्ट बाय हिम. फिल्म में काम किया था राजेश खन्ना ने, स्मिता पाटिल थी, राकेश रोशन थे एंड टीना मुनीम. और राजेश रोशन जी का संगीत था, गाने बहुत खूबसूरत सभी के सभी. स्पेशली दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, इस फिल्म का गीत बड़ा पॉपुलर हुआ, जिसमें लता जी का साथ दिया था अमित कुमार ने. देन एक अंधेरा, ये वाला गीत बहुत बहुत पसंद किया गया था, एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इन्जॉय किया. और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जान तेरे नाम, इस फिल्म के एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ. दीपक बजाज विज ने इसे डायरेक्ट किया था, और फिल्म में रौनित रॉय हीरो थे और फरहीन थी हीरोइन. नदीम श्रवण का संगीत था. उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया, एंड इस गीत को सुनते ही जल्दी से चली आएँ हमारी मिसेस शेख और कहती हैं सरिता मेरा फेवरेट गाना है. थैंक यू जी. एंड विजय गुनोवा जी, बड़े होशियार हैं आप, एकदम आपने पहचान लिया कि क्या कॉमन है आज के गीतों में. एंड आपने कहा मोहम्मद अजीज़ की वॉइस सुनकर बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत रफ़ी साहब की आवाज़ से बहुत मिलती उनकी आवाज़. बिल्कुल ठीक कहा आपने. और जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सबका थैंक्स करना चाहूँगी. ज़रा आपसे पूछ लूँ कैसे हैं, ठीक तो है ना. जहाँ भी रहें खुश रहें, खैरियत से रहें, ज़िंदगी को इंजॉय करते रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी. अगर किसी कारणवश आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सेहतमंद रहें और ज़िंदगी को इंजॉय करते रहें. और ज़िंदगी को इंजॉय इंसान तभी कर सकता है अगर उसकी सेहत अच्छी है. अगर सेहत अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा लगता है. और इस गीत में एक लाइन थी बहुत प्यारी कि सुख का मतलब तभी समझ आता है अगर दुख होता है. अगर दुख आते हैं तो उसके बाद सुख मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. तो थैंक यू सो मच कि आपने ऑलरेडी उस गीत को बहुत अप्रिशिएट कर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ. आज भी किसी ना किसी का तो बर्थडे होगा ना, तो मना लेंगे. आपका बर्थडे मनाते हैं ना, इज़ इट योर बर्थडे? अगर है तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दीजिए आपका बर्थडे, या आपके परिवार में किसी का, आपके दोस्तों के सर्कल फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे, किसको विश करना चाहते हैं, तो जल्दी से अपना मैसेज मुझ तक पहुँचा दीजिएगा. और आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भाई, अगर आप इंडिया पैसे भेजना चाहते हैं SBI UK के जरिए तो बहुत काम आसान है. You can go to the branch online और SBI Yono mobile app के जरिए आप पैसे भेज सकते हैं. आज 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 रुपीस एंड 30 पैसास, एंड टर्म्स एंड conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भी हमारे विजय गनोवा जी को तो पता चल गया क्या कॉमन है आज के गीतों में, कौन सा वर्ड दोनों गीतों में आपने सुना. अगर आपको भी पता चल चुका है और आपका कोई पसंदीदा गीत है तो मुझे लिखकर जल्दी से भेज दीजिए. हो सकता है कि मैं अपनी प्लेलिस्ट को चेंज कर दूं आपकी पसंद के मुताबिक, है ना. तो जल्दी कीजिएगा.
1: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स.
2: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट हिमालय कारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट्स साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Chalo jaiye ek nava safar par.
4: सिरीन हॉलिडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
11: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2pm to 8pm at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
14: हेलो लंदन द वेट इज ओवर कल्याण ज्वेलर्स इनवाइट्स यू टू द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers. Also at Belgrave Road, Leicester.
15: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
16: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: 1968 में आई थी ये फिल्म, 31st of December 1958 को रिलीज़ हुई, डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई, एंड इस फिल्म में काम किया था विश्वजीत, बबीता एंड हेलन ने, और संगीत तो दूर से पहचाना जाता है ओपी नैयर साहब का, एंड द फिल्म हैज़ बीन रियली रियली मीन्स ज़्यादा जो चली थी ये फिल्म म्यूज़िक की वजह से चली थी, ओपी नैयर साहब का संगीत, which included three songs that became very very popular. जानते हैं कौन से वो तीन गाने थे जो मैंने प्ले किया, वो पसंद किया गया लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ था. So I would say that was a rare hit. And जो तीन गाने इस फिल्म के बड़े मशहूर हुए थे वो थे आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूँ, एंड दूसरा गीत था कजरा मोहब्बत वाला, एंड देन आँखों में कयामत के जलवे, वो समथिंग लाइक दैट. विश्वजीत वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लीडिंग एक्टर इन बॉलीवुड टू क्रॉस ड्रेस एज ए वुमन ऑन स्क्रीन फॉर द सॉन्ग कजरा मोहब्बत वाला. वैसे तो बहुत से मेल जो आर्टिस्ट हैं, सितारे हैं, उन्होंने फीमेल ड्रेसेस पहनी है फिल्मों में नाउ एंड देन, लेकिन विश्वजीत पहले थे जिन्होंने बॉलीवुड में पहले लीडिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्रॉस ड्रेस पहना था एज ए वुमन. और इस फिल्म की एक बात है कि कजरा मोहब्बत वाला, दिस फिल्म वाज द लास्ट कोलैबोरेशन बिटवीन सिंगर शमशाद बेगम एंड म्यूज़िक डायरेक्टर ओपी नैयर. ओपी नैयर साहब के लिए शमशाद बेगम ने बहुत से गीत गाए, लेकिन जब आशा जी सीन में आ गई तो आशा जी से ओपी नैयर साहब ने बहुत गीत गवाए, तो उस वक्त शमशाद जी थोड़ा सा उनसे नाराज़ भी हो गई थी कि आप आशा को ज़्यादा गीत देते हैं मुझे कम. पर ये जो गाना था ये लास्ट गाना था जो शमशाद बेगम ने गाया था विद आशा भोसले इन ओपी नैयर सब म्यूज़िक डायरेक्शन. सो इसके बाद उनके लिए शमशाद बेगम ने कोई गीत नहीं गाया था. ये था किस्मत का गीत, और किस्मत के सभी गाने बड़े मशहूर हुए. आपके मैसेजेस आते जा रहे हैं, अपनी अपनी फरमाइशें भी मुझ तक भेजते रहिएगा. बता दूं कि ये किस्मत का गीत आप तक पहुंचाया किसने.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: भाई ये गीत मैं कर देती हूँ आप सबके नाम, महेंद्र बरजारिया जी थैंक यू, एंड निर्मल एंड कीरत जी, संध्या भाव सर, अरुणा जी एंड ज्योति गिरीश शाह, विनी विनोद, वरुण वत्सला जी, विजय गद्रुई एंड मनु जी, भारती जी, संतोष जी, अर्जुन जी, आप सभी का तह दिल से शुक्रिया अदा। और सहर एंड जगतार जी इन वैंकूवर सुन रहे हैं, महेंद्र पटेल जी इन क्रॉयडन, मनु माधवानी थैंक यू सो मच, एंड सलमा इन मेडस्टोन, हना एंड थोची जी, आप सब के लिए मैंने प्ले किया ये वाला गीत जिसे आप तक पहुंचाया था किसने।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Like a
2: gold. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Del, Del's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
5: लाइका गोल्ड
6: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: Visit travelhubworld.com.
9: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
10: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
9: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
12: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.

0: साधना थी एंड साथ में थे देवानंद, ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई थी ये फिल्म, और फिल्म का संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप, सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: राइट, अ पाउंड इन योर पॉकेट कैन गेट यू टुडे। इंडियन रुपीज 128.45, पाकिस्तानी रुपीज 369.97, श्रीलंकन रुपी 444.72, बांग्लादेशी टका 164.69, अफगानी 88.4, एंड यूएस डॉलर्स 1.33।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £97.95 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold.
1: Reminisce those classics on Like a Gold.

0: लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, लेकिन वो बात क्या कहाँ पर है जो तुम में है। फिर वही दिल आया हूँ इस फिल्म से, चुना था मैंने इस गीत को। और ओपी नैयर साहब का संगीत दूर से पहचाना जाता है। नासिर हुसैन साहब की फिल्म थी और फिल्म में जॉय मुखर्जी एंड आशा पारिक ने काम किया था।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
2: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
3: Goodbye.
2: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
6: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
6: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
6: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
8: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208 767 7547.
9: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil, and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
10: Dad,
11: what's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale, I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: हॉन्सलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
14: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
15: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्सलो, TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
16: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
17: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
18: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

कल्याण जी आनंद जी का संगीत हरियाली और रास्ता फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, और इस गीत की फरमाइश मुझे किसी ने लिख कर भेजी, आई एम सो सॉरी कि इतने सारे मैसेजेस में आपका मैसेज गुम हो गया। लेकिन आइए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के अगले गीत की तरफ। मैनचेस्टर, दिस इज द लाइक रेडियो नेटवर्क, और ये गीत मुझे उम्मीद है कि आप सभी इंजॉय करेंगे, बहुत प्यारा गीत है। एंड इस गीत में आशा जी की आवाज़ है एंड फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। तो आपने ये फिल्म देखी है ज़रूर और इंजॉय भी की हुई है। हेमा मालिनी थी इस फिल्म की हीरोइन, देवानंद थे हीरो, जॉनी मेरा नाम। यस, ये गीत हमें न्यूज़ तक पहुंचाएगा, न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ, मेरा साथ देते रहें। ऑफ कोर्स लाखों या लाख वाज़ द कॉमन वर्ड इन दिस आवर।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत मैंने चुना था आ अब लौट चलें फिल्म से, 1999 की फिल्म थी, एंड ये दूसरा गीत 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया से चुना गया था। ये भाग्यश्री पर पिक्चराइज हुआ था और पहला गीत ऐश्वर्या राय, विनोद खन्ना जी के बेटे अक्षय खन्ना और सुमन रंगनाथन पर पिक्चराइज हुआ था। सुमन रंगनाथन इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने वेल शी इज़ अ मॉडल एंड एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत सी कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में उनका आना हुआ था जिस फिल्म से वो थी 1996 में आई थी फिल्म जिसका नाम था फरेब, और उसके गाने बड़े अच्छे थे फरेब के, लेकिन फिर दो गाने 90s के हो जाने थे इसलिए मैंने दूसरा गीत चेंज किया। एंड आ अब लौट चले में उन्होंने काम किया, बागबाँ में थी एंड इसके अलावा एक स्त्री उसमें भी उन्होंने काम किया था। तो आज हमारी तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड अगर आपका भी बर्थडे है तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार आए, हज़ार बार आए, आप खुशियाँ मनाते रहें, खुशियों को बाँटते रहें और खुशियाँ बटोरते भी रहें। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचा दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, आप एक्सचेंज कर सकते हैं पैसे जाके ब्रांच में, ऑनलाइन या SBI Yono मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड किया तो उसके जरिए TNC applies, एंड आज आपको 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिलेंगे 128 रुपीज एंड 30 पैसास।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected
3: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998।

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhai, tumhara naam kya hai? Mera naam to aap jante hain. Main baar baar kehti hoon. Aur phir announce bhi hota hai ki you're listening to Sarita Sabharwal. अपना नाम बताइए, मुझे मैसेजेस भेज कर बता सकते हैं कि कौन है आप, कहाँ बैठे आप इन गीतों को एंजॉय करें, इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। वैसे ढेर सारे मैसेजेस आपके मुझे मिल चुके हैं। रीटा, आपने मुझे पहली दफ़ा लिखा है शायद, एंड रीटा कैंट में रहती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं सभी के सभी गाने भी, और एक गाने की फरमाइश की है लेकिन वो गीत कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ, सो आज के प्रोग्राम में मैं शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर आपकी पहचान, आपकी पसंद भी पूरा करने की कोशिश रहेगी। करसान पिंडोरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा जी, भारती जी, जैस्मिन जैंतन, मीना जी, अर्जुन जी, ज्योति गिरीशा, अरुणा जी, निर्मल एंड कैंट में हैं, आप भी सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत थैंक यू।
0: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गोल्ड।

0: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
1: Gold. और अब भाई सरिता आपको ये बताने जा रही है कि Like a Radio Network टीम अप विद सिफत इवेंट्स एंड सोली जैम लंडन फॉर अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद Prince of Ghazals, Ranjit Rajwada. And it takes place at Herul Arts Center on Thursday, 30th July at 7 p.m. Send in the word Ghazal for you to be and to win. Yes, अगर आप विन करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे ये शब्द लिखकर भेज दीजिए गज़ल GHAZAL गज़ल एंड इफ़ यू डोंट विन डोंट वरी यू कैन परचेज टिकट्स फ्रॉम heroarts.com से एंड टिकट्स आर प्राइस फ्रॉम £25 यूज़ द कोड लाइक अ रेडियो टू गेट 10% ऑफ योर टिकट्स ऑनलाइन विनर्स टिकट विल बी ईमेल्ड अक्रॉस सो प्लीज प्रोवाइड वैलिड ईमेल ID, terms and conditions apply. और तभी आप हिस्सा लीजिए अगर आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं इस शो में तो फिर आप मुझे जल्दी से मैसेज लिख भेजिए गज़ल और अगर नहीं जा पाएँ तो प्लीज़ अपना नाम एंटर भी मत कीजिएगा सो जल्दी से वर्ड लिखिए गज़ल एंड दैट विल बी योर एंट्री टू द कॉम्पिटिशन
0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Sarita Sabharwal, the biggest classics on Leica Gold.
2: Ola jaye phoolon ka shabab usme phir

0: वाह वाह, एवरग्रीन गाने हैं ये, कभी पुराने नहीं होंगे। जब जब सुनेंगे हम इन गीतों को, तब तब इनके साथ गुनगुनाएंगे। लता जी एंड किशोर दा की आवाज़ें, प्रेम पुजारी से चुना था इस गीत को, एस टी बर्मन साहब का संगीत। होप यू एंजॉयड द सॉन्ग। थैंक यू एवर सो मच आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, एनकरेजिंग मैसेजेस के लिए। और आपने मुझे लिखा है प्रथा जी कि आसरी तो थोड़े गाने डिफरेंट हैं लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। थैंक यू, ये जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ इस आवर में कोई थीम नहीं है ना इसलिए, और किसी का ऐसे बर्थडे भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलिए आज खिचड़ी बनाते हैं। तो कभी कभी खिचड़ी भी खानी चाहिए ना, अच्छी लगती है। आप इंजॉय करें, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। राइट भी, अब जरा ये काम भी हो जाए।
1: माइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स।
0: राइट, और पॉडकास्ट एपिसोड 28 एंड रीइन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दीप राजा स्पीक टू मीनल सांबरे फ्रॉम समारिया ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एज इनसाइट इनटू द बैंकिंग सेक्टर। और अगर आपने अभी तक लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के कोई भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिएगा। दैट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elai chai, just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
10: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ
2: info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
16: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
17: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
16: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
18: Sonatours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208. 8951011.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sarita Sabawal with your weekend classics.

0: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
1: राइट भाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने हिस्सा लिया है कॉम्पिटिशन में एंड वो जाना चाहते हैं इस इवेंट में जो हो रहा है 30 जुलाई को 7 PM थर्सडे है उस दिन हैरो आर्ट सेंटर में एंड बहुत अच्छे कलाकार हैं गज़ल आर्टिस्ट रंजीत रजवाड़ा और उनको देखने के लिए जा रही हैं कौन नाम अभी लूँ या नेक्स्ट आवर में थोड़ा सा और सस्पेंस आप तक रखती हूँ और ये गीत हमें पहुंचा देगा न्यूज़ तक. न्यूज़ के उस पार मैं सरिता फिर से आप ही के साथ हूँ टिल 7 o'clock. 7 बजे से लेकर 10 बजे तक विंटेज गोल्ड में आपका साथ निभाते हैं सैंडी शाह, उनका साथ दीजिएगा. पर मैं अभी यहीं हूँ टिल 7. तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर एंड मनहर उदास जी की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म अभिमान.

0: वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू की मेरी तरफ देखो और कहीं नहीं देख सकते। उम्मीद के जो गीत आपने पसंद किया, मैंने एक्चुअली ये गीत सोचा था वो वाला है, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, वो वाला गीत, लेकिन दिस वाज नाइस एज वेल। आशा भोसले एंड लता जी की आवाज़ें आपने सुनी फ्रॉम द फिल्म अली बाबा और 40 चोर, 1980s की फिल्म थी और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद की। इस दौरान बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, थैंक यू सो मच। और आज के प्रोग्राम के लास्ट आवर का पहला गाना एक बार फिर से सुमन रंगनाथन, जो आज अपना बर्थडे मना रही हैं, उनकी फिल्म फरेब से चुना था मैंने इस गीत को। 1996 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म को किसने बनाया था भी, विक्रम भट्ट जी ने बनाया था इस फिल्म को। फिल्म के गाने बड़े खूबसूरत थे, एक तो ये जो मैंने प्ले किया और दूसरा था ये तेरी आंखें झुकी झुकी, जतिन ललित का संगीत था, वो भी नए नए थे तब, तो जतिन ललित का संगीत था। एंड व्हेनेवर आई स्पोक टू जतिन जी और ललित जी तो मैंने ये, एंड ऑल्सो अभिजीत के साथ भी जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये गाना इतना छोटा है, इसके दो तीन स्टैंजास तो और होने चाहिए थे, पर कहते हैं कि अच्छी चीज़ें जो है छोटे पैकेट्स में ही आती हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो दोनों गाने बहुत खूबसूरत हैं, ओ हम सफ़र वाला गाना भी अच्छा है इस फिल्म का, तो आने वाले दिनों में वो गीत भी शामिल ज़रूर करूँगी। सो गुरमीत सिंह बच्चू जी, थैंक यू आपका भी, पर मुझे पता नहीं चल रहा कि आप किस कंट्री में बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और आप कौन हैं। आपने लिखा है कि वेरी नाइस सॉन्ग्स, बहुत मज़ा आ रहा है, तो कौन है आप, अपना नाम भी लिखा करें। ओह सोइनी रावल जी, ओके आपका नाम नहीं आया था। विमल रायन जी, थैंक यू आपका भी। इरम आप जुड़िए हमारे साथ, करसान पिंडोरिया, विजय गुद्राई, साधना भापसर एंड जहीर खान साहब कराची में सुन रहे हैं प्रोग्राम, महेंद्र पटेल क्रॉयडन में सुन रहे हैं। आप कहाँ बैठे सुन रहे हैं आप बताना चाहें तो बता दीजिएगा। जिन्होंने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया बेताबी से इंतज़ार होगी आपको भी प्रथा कि मैं किसका नाम लेने वाली हूँ। फरीदा गुलाम अली जी, थैंक यू आपका भी। और ये कौन है, अपना नाम लिखा करें। बेंसूरा, थैंक यू आपका भी बहुत बहुत। अमरजीत जी, थैंक यू। एंड भारती जी, भारती डीडी, अनदर भारती, महेंद्र बरजारिया जी, सबका मैं थैंक्स करना। रानी ऑफ स्लाव एंड विजय गनोवा जी, इंतशाब सलमा जी, मिसी शेख, तोची जी, जहाँ भी बैठे जैस्मिन, जहाँ भी इंजॉय करें, थैंक यू सो मच कि आप अपना वक्त, कीमती वक्त मुझे देते हैं और प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बता देते हैं कि कहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं। ओके एंड अब कंपटीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया है उन सबका थैंक्स करते हुए ज़रा नाम भी अनाउंस कर दूं कि कौन है विनर। वेल, मेरे कंप्यूटर जी ने चुना है संध्या भावसर जी को। संध्या जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपको ईमेल कर दी जाएंगी टिकट्स और ईमेल आईडी आपने मुझे लिखकर भेज दी है, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और अगर आप टिकट्स खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं टिकट्स, एंड टिकट्स आर अवेलेबल। और साथ में ये भी बता दूं कि टिकट्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, आप लेना चाहें तो आर्ट सेंटर्स है वो आर्ट सेंटर्स से ले सकते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, इस टेकिंग प्लेस ऑन इन हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th जुलाई को एट 7 PM एंड टिकट्स आर अवेलेबल। आपने कहाँ से लेनी है टिकट्स, विनर्स विल बी हैरो आर्ट सेंटर, harroarts.com पर भी जाएंगे तो टिकट्स वहाँ से भी मिलेंगी। एंड इफ़ यू डोंट विन, डोंट वरी, यू परचेज टिकट्स फ्रॉम harroarts.com से। टिकट्स आर प्राइज्ड फ्रॉम £25 एंड यूज़ द कोड लाइका रेडियो टू गेट 10% ऑफ योर टिकट्स ऑनलाइन। सो देर मत कीजिएगा, जल्दी से टिकटें खरीद लें। एंड मैंने इनकी आवाज़ सुनी है, बहुत अच्छे गायक हैं, रंजीत राजवाड़ा, तो ज़रूर जाइएगा। एंड साधना, संध्या जी, आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर आप इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो डोंट फॉरगेट, यू कैन एक्सचेंज द मनी, यू कैन गो इन टू द ब्रांच, ऑनलाइन कर सकते हैं, SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। और आज आपको मिलेंगे कितने पैसे, एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 120 ₹48.30 आपको मिल सकते हैं. इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: अब हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं हेमा मालिनी जी और उनकी फिल्म अमीर गरीब से मैंने नेक्स्ट गाना चुना है. अमीर गरीब इसलिए चुना है क्योंकि ये फिल्म आज ही के दिन इन 1974 में रिलीज़ हुई थी. आप सोचते रहें कौन सा गीत हो सकता है, किशोरदा एंड लता जी का गाया हुआ कौन सा गीत हो सकता है अमीर गरीब का जो मैंने क्यों कर रखा है. आप सोचते रहें, मुझे लिखकर भेजना चाहें तो लिखकर भी भेज दीजिए. Meanwhile, I'm going to play these messages.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal, thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease. With flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in-store or online. TUI. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.

0: किशोर दयान लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ गीत अमीर गरीब फिल्म से मैंने चुना था। ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, 26 जुलाई 1974। मोहन कुमार जी ने इसे डायरेक्ट किया था, फिल्म में काम किया था देवानंद एंड हेमा मालिनी ने, एंड संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आई होप यू लाइक द सॉन्ग। और अब डेरी वैली वाला गाना भी बहुत अच्छा है, ज़रा सुनते हैं।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: मोहम्मद रफ़ी साहब एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म तुमसा नहीं देखा, 1957 में आई थी। ऐसे गीत तो विंटेज गोल्ड में होते हैं। आ रहे हैं सैंडी शाह।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: और इस वक्त साथ दे रहे हैं आप अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल का और मैं

0: आपको याद दिला दूं, लाइक रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो Wembley Arena on Sunday, 27 September. A student pre-show takes place from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main event will be at 6:15 till 9:30 p.m. Created by Sanatan Events founder Nitin Palan, MBE, and featuring choreography from the Bollywood Dance School team, the English language production brings the Ramayana to the life with four chapters, a bespoke seven songs soundtracks and full international cast. Tickets are available from diwalistory.com se. Aaj unki launch thi and Swaminarayan Mandir Neasden mein hum wahan pahunche aur bahut acha laga सारी टीम से मिलकर भी. आप जरूर जाइएगा और बच्चों को, यंगस्टर्स को जरूर लेके जाइए.
1: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: एक और गाना मेरे मनपसंद का, आपको भी पसंद आएगा. अनु भाई न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपका भी धन्यवाद. दिनेश पोपट जी थैंक यू, आपका भी. निर्मल एंड किरत थैंक यू.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Right, we bata de aapko Southall Travel is pleased to announce that the FCGO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call Southall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease with flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in-store or online. TUI. Atoll and Apta protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
3: Ye hai.
4: Leica Gold
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com. Watford में dinner plans, थोड़ा classy, थोड़ा desi.
5: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
1: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala से biryani तक, fresh bread and refreshing drinks. हर bite में लाजवाब flavors और vibe बिल्कुल premium.
5: Friends, family या special night out, इसे यादगार बनाइए. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. बुक योर टेबल टुडे. श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
7: Dad.
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Discover Malta and Gozo with a twin centre island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
13: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coco.

0: भी कर लेना बातें अगले हफ्ते, यस अगले सैटरडे एंड संडे मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। रमीला पटेल जी लिखती हैं, प्लीज़ आज मत जाओ ना, प्लीज़। अब सैंडी जी आ गए हैं ना, तो वो हॉट सीट पर बैठने वाले हैं। इतने प्यारे प्यारे गीत होते हैं विंटेज गोल्ड में, सुनिएगा। और फिर कल नया हफ्ता शुरू होगा, सुबह काजल आएंगी, काजल के बाद रवि शर्मा जी, देन बाली ब्रह्मबर, then Sandy Shah again, and then Ashwini sitting in for Anisa Nasir. मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगी। और मेरे बाद यहाँ लाइका गोल्ड पर आ रहे हैं सैंडी शाह, लेकिन आप मैनचेस्टर में सुन पाएंगे जैसी को। और दूसरी तरफ नीरज आ रहे हैं, नीरज का साथ दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते गुनगुनाते चहकते महकते रहिएगा, और इन गीतों को याद रखिएगा नेक्स्ट वीक तक। यस, गुनगुनाते रहे इन गीतों को, और याद कीजिए कि सरिता ने ये गाने आपके लिए प्ले किए थे। सादिया आप भी सुन रही हैं, आपको भी सभी गाने बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।
1: लाइका गोल्ड Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: Chalo jaiye ek nava safar par.
4: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन।
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
11: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
12: यू नो द क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
13: Southall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
14: बीकानेर वाला
13: परंपरा भी।
14: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
15: Minar Jewelers Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547.
16: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
17: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
18: This is Leica.

0: I did say to you, काफी दर्द भरा गीत था, मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम था विद्या 1948. Going forward, we're going to stay with 1948, और अब हम सुनेंगे हुसनलाल भगतराम के संगीत पर सुरैया की आवाज होगी, फिल्म का नाम प्यार की जीत, another fabulous album again, and then after that, Like a Gold's Vintage Gold, should I say, one of their favorite, most requested albums from the film Bubble. नौशाद का संगीत from 1950 और आवाज होगी तलत महमूद की.
1: Vintage Gold on Like a Gold. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Sandy Shah, live on Like a Gold, Greater London.

0: delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।

0: thoroughly enjoyed that duet, and I certainly hope you did as well. Thank you for all your lovely messages. And just a quick reminder, if you want to hear anything special, I keep reminding you, please drop me an email during the week at sandy@likeagold.com, and that gives me time to get it into the show ready for you at the weekend. It's the best way to get your request through, is to send me an email during the week, as I said, because I do the drive time here 4 to 7 every day, so I can't really be missed. At sandy@likeagold.com, and it'd be my pleasure to have a look at it for you. आगे बढ़ते हुए आफ्टर द मैसेजेस हम सुनेंगे आवाज गीता दत्त और हेमंत कुमार की. फिल्म का नाम है बंदी फ्रॉम 1957 और हेमंत कुमार का ही संगीत था, एंड इट स्टार्ड किशोर कुमार और अशोक कुमार और नंदा. फिर उसके बाद हम सुनेंगे वे रियली गोइंग बैक इन टाइम नाउ प्रो प्योर विंटेज 1937. गेल साइगल की आवाज होगी, फिल्म का नाम था प्रेसिडेंट और मौसीकार थे रायचंद बोराल और पंकज मलिक.
1: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dell, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
3: लाइका गोल्ड
4: ट्रेवल हब वर्ल्ड .com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड .com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड .com.
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: Visit travelhubworld.com.
1: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atal Protected.
3: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
4: Jaam chalne lage.
3: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
10: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
11: Laikagoon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and Laikagoon.com.
12: Tune in to Laika Gold, London's number one Asian retro station on the Laika Radio mobile app.

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley.

0: लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल At all protected.
1: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London. Soon.
2: Like a gold par har raat ki yahi reel. Purane magar sada bahar geet.